मन में चित वो चित मनी उदम करो उठनी थर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मीत सोहला रा गौड़ दीप की महला पहला एकोंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ते आखिए करते काहे बिचारो तित कर गावो सोहला शिव रहु सृजन हारो तुम गावो मेरे निरपौ का सोहला हों वारी जित सोहले सदा सुख होए रहाओ नित नित दियड़ संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तुझदाते कौन सुमार संबसा हा लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सज्जन आसीसड़ियाँ ज्यो हो वै स्यो देहो सज्जन आसीसड़ियाँ ज्यो हो वै साहिब स्यो मेल कर करे हो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन राग आसा महला पहला छे अकार छे गुर छे उपदेश गुर गुरे को भेस अनेक बाबा जय कर करते कीर्त होय सो कर राख वडाई तोय रहाओ विसोए चसया कड़ियां पहरा चित्ती बारी माहो होआ सूरज को रुत नेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल्या लो पवन चवरो करे सकल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खन्ना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहसता नैन नान नैन है तो को सह समूर्त ना एक तो ही सहस पद बिमलना ने एक पद गंध बिन सहसता गंध इव चलत मोही सब में जोत जोत है सोए तिस दै चानण सब में चानण होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत तिस भाव सो आरती होए हर चरण कावल मकरंद लोभित मनो अंदिन मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारन को होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाए मन हरली मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत साधना जाण्या तिन अंतर हौं मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चले चुभै दुख पावे जम काल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन मरण भव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक हर नामे ही सुख मंडा हे रा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो विनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाह आगे बसन सुहेला आओध कटै दिन स रैणारी मन गुर मिलका सवारी रहाओ एहो संसार विकार संसिमे तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए पी आवै एहो रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहाजो हर

ब्रह्मज्ञान सब श्रेष्ठ का कर्ता है, ब्रह्मज्ञान सात जीव है, नहीं मरता, ब्रह्मज्ञान मुक्त जगत है, जीव का दाता, ब्रह्मज्ञान पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञान अनाथ कनाथ, ब्रह्मज्ञान का सब उपरहात, ब्रह्मज्ञान का सकल आकार, ब्रह्मज्ञान निरंकार, ब्रह्मज्ञान की शोभा, ब्रह्मज्ञान परिज्ञान, ब्रह्मज्ञान सर्व का धन श्लोक और तार है, जो अंतर्नाम सर्वीख भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक हुआ परस सकल निहतार अस्पति मिथ्या नाह रसन परसमान में प्रीत निरंजन दरस पर त्रिय रूपना पीख नेत्र साधु की टहत संत संघीत करण नना सना कह के निंदा हवते जाने अवस कमंदा गुरु प्रसाद विखिया पर हर मन की वाहन मन ते टर इंद्री जीत पंच दोह ते रह नानक गुण मध्य कुसा पर वैष्णो सो जिस उपर सो प्रसाद निर्विशन कुमार दे विपिन कर्म कर दो निह कर्म दस वैष्णो कर निर्मल तरु कह कर की इच्छा निह वैश क्योर भगत कीर्तन संग्रह चमन तर अंतर स्मरण गोपाल सब उपर उद कृपा राव दृढ़ अवरहन जपा नानक वैष्णो परम का दुपा व भगवते भगवंत भगत करंग सकल त्याग दोष का संग मान ते बिन सा सकला परम कर पूजा सकल पार बनो सा संग पापा मन हुआ दस भगवत की मा दूत मोबा भगवंत की टहल कर नित नित मन तन रपै बिसन प्रीत हर के चन हरदा बसव नानक है भगवते भगवंत का उपाव स पंडित जो मन प्रभुत राम नाम आत्मा सोद राम नाम सार रह पीवा पंडित कै उपदीस जाग जीव हर की कथा हरदा बसव स पंडित फिर जो नाव वीत प्राण सुख पूजा मूर सुख मै जान सुर चह वरण कदि उपदीस नानक उस पंडित कौ सदा दिख बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चह वरना मह जापै को नाम जो जो जापै दुसकी गा दुसा संग पावे जन कोई कर कृपा अंतर अवतार पास प्रीत मुकत पात्र कवतार सर्व रोग का औखत नाम कल्याण रूप मंगल गुण काम कहु जुगत किता ना पाई धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया दुर्कर्म जिसका मन पार ब्रह्म कर वह जिसका नाम सत राम दास सातम राम दिह नद्रिया दास संतन पाए तन पाए सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह प्रवान अपने दाह को आप कृपा कर दिह दाह कव सब सोजी पर है।

कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होया अवतार कई जुगत किन विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदाई कई अहंकार कई कोट किन बह पाद प्रवति हुई परमास माता कांतना जनक अनु प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास दिन होते आत्म प्रगा कई कोट तात की बेटी सदा निहार है कुनेत्र कई कोण नाम रह पीव हमर पय साध साध ही जीव है कई कोण नाम कन काव्य आत्म रास सुख सहज समाव अपने जान का सा सा संभार नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक कारण कारण प्रवीक है दूसरा नाही कोई नानक देह बलहारण जल थन मही जल सोयष्टपति करन करावन करना जोग जोग पावे सोज होग खेन महथापन अरंत नहीं किस बारा बारह हुक्में तार अतार रहा हुक्में उपजा हुक्म समावे हुक्में उज नीज व्यवहार हुक्में रंग प्रकार कर कर दिखा अपनी मुड़िया नानक समय रहे समय प्रभ पावे मनुख गाद पाव प्रभ पावन पाथर त्राव प्रभ पावे वंशाह रख प्रभ पावन हर गुण पाख है प्रभ पावन पत त्यो धारे आप कर अपन विचार दुह श्रे का स्वामी खेला बिकसा अंतर जम जो पावे सुकार करा नानक दृष्टि और न आवे कह मानुख दि क्या हुआ जो दुख पावे सुख करावे उसका हाथ हुए तो सब गिरी जो दुख पावे सुख करिए अनजानंद विख्या महाराज।

अनक तपस्या करे अहंकार नरक सब फिर फिर अवतार अनक जतन कर आत्म निंद्रावे हर दरगह कह कैसे कह उसको जो पला कहवे तो सब पलायु निकट नावे।

गया संतक दुख का सब त्याग संतक दुख महा अहंकारी संतक दुख सदा विकारी संत का दुखी जन्म अमर संत के दुख न सुख दे टारा संत के दुखी का नाश उठाए उन्हें संत पावत नहीं मिला संत का दुखी अद बीत टूटा है संत का दुखी कदा काज न पाए हु जाए संत के दुखी का उद्यान परमाई गया संत का दुखी जुड़ पाई गया संत का दुखी का अंतर तीर्थ होता है जो सास बिना मृत किलो था संत के दुखी की जाड़ के संदा है अपन भी जा बेह खा ही संत के दुखी का अवर न रख नान संत पावत रहे वो भार संत का दुखी हो बेले लाए ज्यो जल भी हूं मछली तड़ फटाए संत का दुखी भूखा नह राज ज्यो पाव की तो नहीं त्राप है संत का दुखी छोटा अकेला ज्यो बुआड़ तेरे खेत में हम दुखेला संत का दुखी तरम ते रहत संत का दुखी साथ में थे कहत करत नंद का दुखी पया नानक जो पावे सोई थे संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी का दरगाह मिला सजाए संत का दुख सदा सह पाई आ संत का दुखी न मरा न जीवाई आ संत का दुखी की पूजा न आसा संत का दुखी उठ चला निराशा संत का दुख न दृष्टा कोई जह पावत ऐसा कोई हो पाया करत न बेटा कोई नानक जान सचा सुख सब काट दुखी हो करने यार सदा सदा दस का नमस्कार प्रभु की उस्तत कर हो दिन रात ते सहित या सास रा सब कह वरत दुख का किया जैसा करता है कुछ किया अपना खिलाफ करने यार दूसर कौन कह विचार जिसन कृपा करते सब नाम देव उपाय नानक जान सी सलोक ता जहु सियान सुर जन सिमरह हर हर आय एकास हर मन रखम नानक दुख परम पाव जाय अष्टपदी मान दुख की टेक पृथ्वी सब जान दीवन कोई का भगवान कदियर है अगाय बहना तृष्णा लागे आई मारा रखे कुआ मान क्या कृष्ण है दुख का कुंभुज सुख का नाम रखंठ पुर सिमर सिमर सिमर प्राव सोय नानक बिगन लाग कोई उस्तत मान महकार निरंकार कर मन मेरे साथ व्याम हार निर्मल रसना मृत पियो सदा सुहिला कर दी जीव नय नह पीख ठाकुर का रंग सा संग बिन सा सब संग चरण चरम वार गोविंद मिटह पाव जब यार बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर्ग नानक पूजन मथा बिट पागी ती जान जग मह सदा सदा की गुण गाय हे राम नाम जो कर विचार से तन वंद करे संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जान हो ती सुखी कुए कै पुछा नय तो सोजी जान राम संग जिस मन मानिया नानक दिन निरंजन जाने गुरु प्रसाद अपना सो जाय जन तृष्णा बो जाय सा संग हर हर जह कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत अनुदिन कीर्तन की ओर बखिया अनुग्रह तमा सो इंद्र बाय ने कुपर जय जन की आशा दुखी कट गया जम के पास पार बन जिस मन कुख नानक ते सह न लागह दुख जिस का हर प्रमाण चित सो संत सोहेला नहीं बुलावे जेह प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक आहु किस दे डरा जा सा साध है दृष्टाय अपने काज में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तथा बूझिया जाब दीखा तब सब किस मुगर नारंग सो सुखम सोया सो नह के जन्म नह किस मरे आपन चलता आप ही करे आपन जावन दृष्टा दृष्ट आ गया कर तारी सब श्रेष्ठ आप आप सकल में आपन के जुगत राज था प्यो था अपनासी नह किस कण तारण तारह ब्रह्मांड अला के अभी पुरुष प्रताप जो पैदा नानक जाय जन प्रभु जाता सो शोभावंत सकल संसार उतरा तनमंत प्रभु के सेवक सकल उदारण प्रभु के सेवक दुख विसारण अभी मिल लई कृपाल गुरु का सब जाप है निहार उनकी सेवा सोज लाग जिसनु कृपा करह बड़ भाग नाम जपत पावे बिस्तरा नानक तिन पुरख कहु तुम करमान जोगिश करा सो प्रभु करंग सदा सदा वस हर संग सह सुवायु वस वे करण यार पुछाण सो प्रभु का किया जन्म का न जय सा साथ ऐसा दृष्टा न जह के उपजे तह वाहि सुमाय वे सुख न दान उन बनाय अब सुख वाब दीनो मान नानक प्रभु जन को जन श्लोक सर्व कला भार पूर प्रभु व्यर्थ जानन हार जाग समरन उदरिया नानक बल हार अष्टपदी टूटी गणन हार गोपाल सर्व जिया विप्रत पाल

साधु प्रजाइय कुरबान साध सिवा बड़ भागी पाया साध संग हर कीर्तन गाय अनक बेगंत साधु राखा हर गुण गाय अमृत रह जाक ऊट गहे संत हैदर आया सर सुख नानक तिह पाया मृत कव जी बल नर भूखे कव देव आधार सरुन धान जग दृष्टि माही प्रभु लिख कल्याण पाही सब किह तिस कहु करना जोग तिस बिंदु सरवा न होग जाप जान सदा सदा दन रहणी सब दुख निर्मल करणी कर कृपा जिस नाम दिया नानक सोजा निर्मल थिया जा का मान गुर की प्रतीत तिस जान आव हर प्रभु जीत भगत भगत सुनि आया तिह लोए जाक हृदय को हुए साच करणी सहता की रहत साच हृदय साध मुख कहत साच दृष्ट साच आकार साच वरत हाचा पास सार पार ब्रह्म जन साच कर जाता नानक सो जान सच समत श्लोक रूप नारी निरंकिश त्रिभुवन ति प्रभिन्न तिस हो जाय नानक सुवास प्रसन्न अष्टपदी अविनाश ब्रह्मान महाराख मानुख की तुबरी त्याग तिथ पर न किश को सर्व निरंतर कुसुआन पिदान गहर गंभीर गहिर सजान पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा नधान दयाल भुखसंद साध तेरे की जन्म पाव नानक मारे मन राय मन सा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सुई होग हरण करण जाक नेत्र पोर तिसका मंत्र ना जान होर अनंत रूप मंगल साध जाक सरथोक सुनिह कर ताक राज महाराज योग महाजोगिता महतपि स्वर्गरात्म भोगी त्याई त्याय भगत सुख पाया नानक तिह पुरखा कने अंत न पाया जाग लीला की मेत ना सकल दिवार अवगाह पिता का जन्म किए जान पूत सकल पुरै अपना सूत समात ज्ञान ध्यान जन दी जान दास नाम दिया वह सी।

जिस बुझाई तिसा सब परि सतनाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरदी पाए सत वचन साधु उपदेश साथी जन जा कै हृदय प्रवेश सतनगत पूजा जी कोई नाम जब तक दया साधु किया सब साथ आप ही जाने अपनी मेहत गायत जिसकी श्रेष्ठ सो करने आरवना बुझ कर विचार कर दे कि मित ना जाने की नानक जो दिख पावे सो वर्ती या विस्म विस्म पाए विस्मा जन पूजिया दिखाया स्वाद प्रभु का रंग राज जन रही गुरु का वचन पदार्थ लही हुए दाते दुख काट नार जा का संग तरह संसार जन का सेव

प्रसाद को बिरला लाख सुख मिश्रा जी विखरी काट है जन्म जन्म का टूटा गाट है गुरु पूरा दाते है बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याय साजन संत करो यहु का मान त्याग जप हर नाम सिमर सिमर सिमर सिख पाय बह आप जप हो अब रह नाम जो पाय बह भगत पाय दरगा संसार बिन भक्ति तन हो सी शार सर्व कल्याण सुख निध नाम बुढ़ जात पाय बसराम सकल दुख आवत नास नानक नाम जप गुंता सुख जी प्रीत प्रेम रह चा मन तन अंतरी स्वाव नेत्रह पेख दरस सगोय मन बिकसा साध चरण तोय भगत जन का मन तन रंग बेटा को पावे संग बस दीजा कर मैया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाय नानक रहया सर्व समाई।

सगन अब सगन कह विचार जहाँ अपन ऊच अपन अब नीरा तह कौन ठाकुर कौन कह अचीरा विस्म विस्म रहे विस्मा नानक अपन का जान हो आव जहाँ शाले अशेद अभेद समाया ऊह सव्यावत माया उसको आप आदिश तेह गुण का नाह प्रवेश जह एक एक एक भगवानता तह कौन अचिंता गहला के चिंता जहाँ अपना पूरा पति आरा

सूझ पाए सो अंतर सो बाहर अनंत काट काट व्यावर है भगवंत तरन माहि आकाश पाए आर सर्वलोक गुण प्रात पार वहां पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आगे तैसा करम पावन पाने वह संतर माहि चार कुंट दह दिशे समाहि तेह ते पे नहीं कोठा गुरु प्रसाद नानक सुख पाए वेद प्राण समर्थ मह दीक्ष सी अर सुगन किया तरम ही बाणी प्रभु के साथ बोले आवा डोल न कम डोले सर्व कलाकार सर्व कलाकार खेल खेल मोल न पाई अगुण है अमोल सर्व ज्योत मह जा की ज्योत तार ही स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नाश नानक तेन मह हो विसा संत जनक पीखन सब राम संत जनक सब धर्म संत जना सुन सो वचन सर्व्या राम संग्रचन जिन जाता तिस्किय रहत सात वचन साधु साहु कहत जो जो हो सो सुकुमार नय करन करावन हार प्रव जाने अंतर बसे बाहर भी ओह नानक दर्शन दे सा मोहि अवसाद किया सब साथ देह प्रव दे सगरी उत्पात देह पावे ता करे विस्तार देह पावे ता एक अंकार अनक करा रखी न जाय जिस भाव देह लय मिलाय जी अनक कला लखी नह जाय जिस भाव देह लय मिलाय कवन निकट कवन कहिया दूर अपिया पाप हर पूरे अंतर्गत जिस सब जनाय नानक देह जना बुझाय सर्व भूता वरतार सर्व नयना भीख नर सक समग्र जा कतना

जय जय सबदा नाहद वा जय सोन सन अनंत करे प्रभु का जय प्रगट कुपाल महांत के मथे नन कुदरतन का साथी सरण जोग सन सरणी आय कर कृपा प्रभा मिलाई।

गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं, छपै छंद त्वै प्रसाद, चक्र चिन्ह अर वर्ण जातर पात, निहंजे रूप रंग अर रेख, भेख को कह ना सकत केह। अचल मूर्तन पौ प्रकाश, संतोज कही जय कोट इंद्र इंद्राण, साहे साहाण गिण जय त्रिपाण, मही पुसुर नर असुर, नित नित बन तृण कहत। वह सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम, वर्ण सुमत भुजंग प्रयात छंद। नमस्तवं अकाले, नमस्तवं कृपाले, नमस्तंग रूपे, नमस्तंग अनूपे, नमस्तंग अपेखे, नमस्तंग अलेखे, नमस्तंग आकाय, नमस्तंग आजाय, नमस्तंग गंजे, नमस्तंग पंजे, नमस्तंग नामे, नमस्तंग ठामे, नमस्तंग कर्मंग, नमस्तंग धर्मंग, नमस्तंग नामंग, नमस्तंग तामंग, नमस्तंग जीते, नमस्तंग पीते, नमस्तंग वाहे, नमस्तंग आटाहे, नमस्तंग नीले, नमस्तंग नादे, नमस्तंग छेदे, नमस्तंग गाधे, नमस्तंग गंजे, नमस्तंग पंजे, नमस्तंग उदारे, नमस्तंग पारे, नमस्तंग सोएके, नमस्तंग नेके, नमस्तंग पूते, नमस्तंग जूपे, नमस्तंग निरकर्मे, नमस्तंग निरपरमे, नमस्तंग निर्देशे, नमस्तंग निरपेशे, नमस्तंग निरनामे, नमस्तंग निरकामे, नमस्तंग निरताते, नमस्तंग निरकाते, नमस्तंग निरतूते, नमस्तंग भूते, नमस्तंग लोके, नमस्तंग शोके, नमस्तंग निरतापे, नमस्तंग थापे, नमस्तंग त्रिमाने, नमस्तंग निदाने, नमस्तंग गाहे, नमस्तंग बाहे, नमस्तंग त्रिवर्गे, नमस्तंग सर्गे, नमस्तंग प्रभोगे, नमस्तंग सुजोगे, नमस्तंग रंगे, नमस्तंग भंगे, नमस्तंग गमे, नमस्तस्त रमे, नमस्तंग जलाश्रे, नमस्तंग निराश्रे, नमस्तंग जाते, नमस्तंग पाते, नमस्तंग मजबे, नमस्तस्त अजबे, आदेशंग आदेशे, नमस्तंग पेशे, नमस्तंग निरतामे, नमस्तंग निर्वामे, नमो सर्वकाले, नमो सर्वदयाले, नमो सर्वरूपे, नमो सर्वकूपे, नमो सर्वखापे, नमो सर्वथापे, नमो सर्वकाले, नमो सर्वपाले, नमस्तस्त देवै, नमस्तंग अपेवै, नमस्तंग जन्मे, नमस्तंग सुबन्मे, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे, नमो सर्वरंगे, नमो सर्वभंगे, नमो कालकाले, नमस्तस्त दयाले, नमस्तंग वरणे, नमस्तंग मरणे, नमस्तंग जरारे, नमस्तंग कृतारे, नमो सर्वतंदे, नमो सात अबंधे, नमस्तंग निरसाके, नमस्तंग निर्वाके, नमस्तंग रहीमे, नमस्तंग करीमे, नमस्तंग अनंते, नमस्तंग महंते, नमस्तस्त रागे, नमस्तंग सुहागे, नमो सर्व सुखंग, नमो सर्व पोखंग, नमो सर्वकर्ता, नमो सर्वहर्ता, नमो जोग जोगे, नमो भोग भोगे, नमो सर्वदयाले, नमो सर्वपाले। चाचरी छंद त्वै प्रसाद, अरूप है, अनूप है, अजू है, अपू है, अलेख है, अपेख है, अनाम है, अकाम है, अधेय है, अपेय है, अजीत है, अपीत है, त्रिमान है, निधान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निर्सरीक है, निरलंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अक्रम है, अपरम है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगा है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमानि समस्ति निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे, अनंगी अनाथ नृसंगी परमात्मा, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो भान भाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी नामे समस्ती स्वरूपे प्रपंगी प्रमाते समस्ती विभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणी, नमो अस्त्र माणी, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता पिकीय परमीय भोगीय भुक्ते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायण क्रूर कर्मे, नमो प्रेत आप्रेत देवे सुतर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो भूप भूपे, नमो दान दानी, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नानं,
नमो मंत्र मंत्र नमो यंत्र यंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं वर्णासी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धा बोधधा वृद्धकर्ता अधो ऊर्ध अर्धं अघं ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं छेदीय भेदिया नाम नकाम समस्तोपराधि समस्तस्तताम तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीठ हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निधानी नमस्त्वं निरनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं गंजे नमस्त्वं पंजे नमस्त्वं काले नमस्त्वं पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृशंग नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धंग निवासी चरपट छंद प्रसाद अमृत कर्म अमृत धर्म अखल जोगे अचल पुगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग भेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद त्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जौन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज अवतूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त जौन आद असेख देश और न भेष जाकर रूप रेख न राख जत्र तत्र दिशा विशा होय फैलो अनुराग नाम कान दहीन पिक ताम हुन है जाए सर्वमान सर्वतरमान सदैव मानता है एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक दे भिव न जानहि जे वेद और कतेव रूपंग न जा रूप रंग न जात पात सुजानहि कह देवतात मात न जात जाकर जन मरण बहीन चक्र बकर फिर चत्र चक मान ही पुरतीन लोक चौध हैं के बिखे जग जाप जे जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सब है जेह थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचे सुयंग भव गड़न पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सुभरम रहते अभूत अलख अपेस अंग राग न रंग जाके जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायकाम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सरपंजन आदि रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्वकायक सर्वको प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वतेन वेख सर्वशास्त्रना जानहि जे रूप रंगर रेख परम वेद पुराण जाके ने पाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आवहि बहुचित मद पार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार मह माया पार आसन अभंग उपमानंग अनुपव प्रकाश निस्दिन अनास अजान बाहु सहान साहो राजान राजपानान पान देवान देवपा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुपूत अंग आपा अभंग गतमेद पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम आत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म दृश्य धर्म सर्वा परणांड अंडड बाढ़ चाचरी छंद प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरिं करी निरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दानी चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मान्य चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पितरे न कर्मंग न काया जन्मंग जाय न चित्रे न मित्रे परे हैं पुत्रे पृथ्वी सह आदि सह आद्र सह आक्र सह भगवती छंद त्व प्रसाद कथते
ਕੇ ਆਛਿਜ ਦੇਸੈ ਕਹਿ ਭਿਜ ਭੇਸੈ ਕਹਿ ਆਗੰਜ ਕਰਮੈ ਕਹਿ ਭੰਜ ਭਰਮੈ ਕਹਿ ਆ ਭਿਜ ਲੋਕੈ ਕਹਿ ਆਦਿਤ ਸੋ ਕਹਿ ਕਹਿ ਅਵਤੂਤ ਵਰਣੈ ਕਹਿ ਵਿਭੂਤ ਕਰਣੈ ਕਹਿ ਰਾਜੰ ਪ੍ਰਭਾਹੈ ਕਹਿ ਧਰਮੰ ਤੁਜਾਹੈ ਕਹਿ ਅਸੋਕ ਵਰਣੈ ਕਹਿ ਸਰਬਾ ਭਰਣੈ ਕਿ ਜਗਤੰ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛਤਰੰਗ ਛਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਪਨੂਪ ਹੈ ਕਿ ਆਦਦੇਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇਵ ਹੈ ਕਿ ਚਤਰੰਗ ਬਹੀਨੇ ਕੇ ਅਧੀਨ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰਜ਼ਾ ਕੇ ਰਹੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਕੇ ਪਾਕ ਬੇਐਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਵਲ ਗੈਬ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਹਾਂਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੰ ਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੰਗ ਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਗਾਉਣੇ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਉਣੇ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਸਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਲੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾਹੋ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਹੋ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪਾਲ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਹੰਤਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਗੰਤਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਕਾਜ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਸੁਖ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਤ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨ ਹੈ ਸਦੈਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਜਾਪ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਥਾਪ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭਾਨ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਇੰਦਰ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਚੰਦਰ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬੰਗ ਕਲੀਮੇ ਕੇ ਪਰਮੰਗ ਫਹੀਮੇ ਕੇ ਆਕਲ ਲਾਮੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੇ ਕੇ ਹੁਸਨ ਵਜ਼ੂ ਹੈ ਤਮਾਮਲ ਰਜ਼ੂ ਹੈ ਹਮੇ ਸੁਲਸਲਾਮ ਸਲੀ ਖਤਮ ਉਦਾਮੇ ਗਨੀ ਮੁਲ ਸ਼ਿਕਸਤੇ ਗਰੀਬ ਉਲ ਪਰਸਤੇ ਬੁਲੰਦ ਮਕਾਨੇ ਜ਼ਮੀਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤਮੀਜ਼ ਉਲ ਤਮਾਮੇ ਰਜ਼ੂਲ ਨਿਧਾਨੇ ਹਰੀਫ ਉਲ ਅਜ਼ੀਮੇ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨੇ ਅਨੇਕ ਉਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਭੇਦ ਹੈ ਅਭੰਗ ਹੈ ਆਜੀਜ਼ ਉਲ ਨਿਵਾਜ ਗਨੀ ਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਪੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੁਜੁਗ ਸੁਧਾ ਹੈ ਸਦੈਵ ਸਰੂਪ ਹੈ ਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵ ਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਗਾਦ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਓ ਅੰਗ ਆਦ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਨੰਗੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਤ੍ਰਿਬਾਦ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧ ਸੁਭੰਗ ਸਰਬ ਭਾਗ ਸੋ ਸਰਬਾਨੁਰਾਗ ਤ੍ਰਿਭੁਕਤ ਸਰੂਪ

प्रसाद। सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंग्याता सर्वंग्याता सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंगप्राणो सर्वंगतराणो सर्वंगकर्मो सर्वंगधर्मो सर्वंगयुक्ता सर्वमुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद। नमो नरको नास्य सदैवं प्रकाशय अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगात स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभंगी स्वरूपे सर्वंगी रूपे न पुत्रेण पुत्रेण सत्रेण मित्रेण तातेन मातेन जातेन पातेन साकं श्रीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रवाह अजय है अजा है भगवती छंद त्व प्रसाद। के जाहर जूर हैं के हाजर हजूर हैं मैं सुसलाम इस मस्तू कलाम के साहिब दिमाग के हुस्न चरागे के कामल करीम के राज करीम के रोजी ध्यान दे के राज करहन दे करीम को माल के हुस्न जमाल गनीम लुख राज गरीब निवाज हरीफ चिकन है रासुल फिकन है कलंक प्रणास है समस्तु निवास है अगंज गनीम है रजाय करीम है समस्तु जुबा है के साहिब करा है के नरकम प्रणास हैं बिस्तुल निवास हैं के सर्वल गवन हैं बिस्तुल रवन हैं तमामल तमीज हैं समस्तुला जीज हैं परंग परमीस हैं समस्तुला दीस हैं देशोल लेख हैं मेसुल अपेख हैं जमील जमा हैं मीकुली माह हैं करीमल कमाल हैं के जुर्त जमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के अमितो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के अमितो विभूत हैं के अमितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचंग अनंग हैं के अमितो अपंग हैं मधुपार छंद त्व प्रसाद। मुन मन प्रणाम गुन गुन मदाम अरबर अगांज हनर पर भांजन गन प्रणाम मुलम सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनपवनाश मुन मन प्रकाश गुन गुन प्रणाम जल थल मुदाम अन छेजांग आसन भंग उपमा पार गत में तुदार जल थल मंड दिशु सुपंड जल थल महंत दिशु सुबंत अनपवनाश त्रित तर तुरास। आजान बाहु किसे दाह ओंकार आज कथनी नाद खलखंड ख्याल गुरुवर अकाल कर कर प्रणाम चित चरणाम छिज गात जिज नातन झंझ गात रंज बातन टुट पंडार न ठटिया पार डीठ तर मत टीठ कर्म। आन ब्रण अनंत दाता महंतर बोल मना छंद त्व प्रसाद। करुणाल है काल है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान है जग जान है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है। अजपा जपे थप्पा थापे कृता करते हैं अमृता मृत हैं अमृता मृत हैं करुणा करते हैं कृता करते हैं धरणी तृतें ते आ कृता करते हैं धरणी तृतें ते स्वर हैं परमेश्वर आकृता करते हैं अमृता मृत हैं अजबा करते हैं आमृता मृत हैं निर्णायक हैं खलकायक हैं सुम्बर हैं करुणालय हैं नृपनायक हैं सर्वपायक हैं भाव भंजन है अर्गन जन रिपतापन है जप जापन है आकलन करते हैं सर्वा करते हैं कर्ता कर हैं हरता हर हैं परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस हैं जस के जस हैं भुजंग प्रयात छंद। नमो सूरज सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग शांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलहकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रियानादंग विपुते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बाक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास कास गंज अपंज अलख पख काल दयाल लेख भेखा नाम काम अगाह अटाह नाथ परमाथे अजोनी मोनि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे आकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद। नमस्तु प्रणाम स्मस्तु प्रणासे अगंजुल नाम स्मस्तु निवास इंद्र कामंग विपुते स्मस्तु स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विपुते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा स्मस्तु निवासी अजायब विपुते गजायब गुनी में हरियंग करियंग करीमल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंग भाव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं विपुते।

कहता संयम रहे कर्म कमाए सहसे जियो मलिन है कि संयम धोता जाए मन धोव हो शब्द लागो हर स्यो रहो चित लाए कह नान गुर प्रसादी सहज उपजय एह सहसा उपजय जियो मैले बारो निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जो है हारिया एह तुसना वड्डा रोग लगा मारण मन हो वे सारिया वेदा में नाम उत्तम सो सुन है नाही प्रह ज्यो बेतालिया कहे नानक जिन सच तजया कूड़े लागे तिनी जन्म जो है हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो तन निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोय पहुंचे नाहीं मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुरु नाली जे को सिख गुरु से ती सनमुख हो वै होवे तां सन मुख सिख कोई जिहो रहि गुरु नाले गुर के चरण हृदय ते अंतरात्मा समाले आप छड सदा रहि परने गुर बिना वर न जाने कोई कहे नानक सुनो संत हो सो सिख सन मुख होए जे को गुर ते वे मुख होवे बिन सतगुरु मुक्त ना पावे पाए मुख ना होर थे कोई पुछो बिबेकिया जाए अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुरु मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु सब सुनाए कहे नानक विचार देख हो बिन सतगुरु मुक्त ना पाए आव हो सिख सतगुरु के प्यार हो गाव हो सच्ची बाणी बाणी का गाव हो गुरु केरी बाणी असर बाणी जिन कौ नजर कर्म हो वह हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हो हर रंग जपे हो सारंग पाणी कहे नानक सदा गाव हो सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजू होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करहै रसना कहया कछु ना जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पैरवाणी कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा हो आसमाओ शब्द से ती मन मिलया सच्चे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनों दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सेव सकत आप उपाय कह करता आपे हुकम वरताए हुकम वरताए आप वेखे गुरमुख से बुझाए तोड़े बंधन हो वै मुक्त शब्द मानो वसाए गुरमुख जिसनों आप करे सो हो वै कस्यों लिवलाए कहे नानक आप करता आपे हुकम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ते सार न जानी तत्ते सार न जानी गुरु बाजो तत्ते सार न जानी तिहि गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुतियां रहण विहानी गुरु कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कहे नानक सो तत् पाए जिसनो अंदिन हर लिव लागे जागत रहण विहानी माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिय मनो क्यों विसारिये वडदाता जे अग्न मह आहार पहुँचावे ओसनो कह पोहे न सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कहे नानक उड़ जाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जय करते खेल चाहे जात भाणा ता जमया परवार भला पाया लिव छुटकी लगी तुष्णा माया मर वरताया एह माया जित हर विसरे मोह पुजै भाव दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुलना पाया जाए मुलना पाया जाए किसे विट हो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विचों आप जाए जिसदा चियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए हर आप अमुलक है भागत ना के नानका जिन हर पल्लै पाए हर रास मेरी मन वण जारा हर रास मेरी मन वण जारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जप हो जिहो लाहा खटे हो दिहाड़ी एहो धन तिना मिला जिन हर आपे भाणा कहे नानक हर रास मेरी मन हो आवण जारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होर तकतै जिचर हर रस पल्लै ना पाए हर रस पाए पल्लै पीए हर रस भौना तृष्णा लागे आए एहो हर रस करमी पाइए सतगुरु मिले जिसे आए कहे नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम्मै जोत रखी तातू जग में आया हर जोत रखी तुद विच तातू जग में आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਿਸ਼ਕਾਂ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭਾਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਸਖੀਏ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਪੈ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਏ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨਾ ਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨਾ ਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਇਹੋ ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਬਿਨਾ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਏ ਸ਼ਰਾਵਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸੱਚ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸੱਚ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜਿੱਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਬਹੁ ਸੱਚ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ।

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧ ਤਨ ਲਾਭ ਹੈ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵਹੇ। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद पाठ पिटंबर हटावे तिसे त्यागत अवर लुभावे। जे प्रसाद तु सबको माने मुक्ता को जस रसन बखाने। प्रभ जी जप दरगह मान पावहे नानक पसे ती कर जावहे। जे प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सा सा सिमरो प्रभुचे। जय प्रसाद आभूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद भाग मिलक तना राग प्रोय प्रभ अपने मना। तिसहे त्याए जो एक कलक है इहां उहां नानक तेरी रख है।

0: जय प्रसाद सुनहै करनाद, जय प्रसाद पेखै बिस्माद। जय प्रसाद हस कर चल है, जय प्रसाद संपूर्ण फल है।
1: प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सुख सह समावे।
0: ऐसा प्रभु त्याग।

0: जय प्रसाद तू पाव है साच रे मन मेरे तू तास्यों राच
1: प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए
0: आप जपाए जपे सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ
1: प्रभु दे आते कमल बिगास
0: प्रभु सुपरसन बस

0: साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा पर फुले, साध संग हुए सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभु सुख प्रसन्न, साध संग किस्यो नहीं बैर, साध के संग न बिका पैर, साध के संग नाही हो ताप, साध के संग तजै सब आप, साध के संग न कब हूं तावे, साध के संग सदा सुख पावे, साध के संग बसे थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे, साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान,
1: साध के संग सब कुल उदार, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार,
0: साधु के संग सोतन पावे, जिस दंते सब को बरसावे,
1: साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा,
0: साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग नहीं कछु काल, दर्शन भेटत होत निहाल,
1: साध के संग
0: इहां वहां सुहेला, साध संग बिछुरत हर

0: साध के संग न मन ते बिसरे, साध संग सर पर निस्तर है।
1: साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संकट कट डीठा।